0: कुलास तुम कुफा भी
1: रिफा म्यांस नुल्ला नुना ते म्यासन टीचर सया आर्मन अप्यासियन रतेरे का डेटे तंबाउप शिक्या ते मनुना निफितुंड्रान आर जन मनुना निफितुंड्रान सान्या ते म्यास फट म्यासे शकुर फा म्यासा अम्फा पंसुना आर म्यासा न्यापंदे निफितुंड्रान मातेत्या मायनो ने बात क्यान फरानिस नानांगना अरनिस नताकें तीफा ना फोसंतिया रानिस फोलुने कोलोनेल मिकाएल्ला फारुआन मालाकास मेरामेंजा अरसा चिकन उम्तेनें जान चिशा वकनियंदां जान चिशा वकनिस लुटेन जानिया फ़ाज़न मज़ावा अरज़न तोम ततारं तीफ़िरेनेंटी कदेमानो अंचा वंचकेरेटरेट सिमाइस्ताटेरानं फ़ानवाना Tsimur zany, sarotra zany, ka nefa tsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika. Ary tsika dia manampy, ary rehefa manampy dia tena manampy marina niteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.